गोविंद ना भजे अहं बुध माता जन्म जुए ज्यों हारे। नाम अमोला प्रीत नत स्यों पर निंदा हितकारे। छापर बांध सवारे प्रण को द्वारे पावक जारे। कालर पोट उठावे मुंडे अमृत मन से डारे। ओढ़े वस्त्र का

ताती भावना लग गई, पार ब्रह्म शरणाई। नो हार्म कम्स टू देम हु आर अंडर वाहिगुरुज प्रोटेक्शन। ऑन ऑल फोर साइड्स इज माई लॉर्ड्स प्रोटेक्शन। आई हैव मेट द परफेक्ट लॉर्ड हु इज द क्रिएटर। He has gifted me with the balm of Lord's name, and I have enshrined love for Him within myself. The Preserver has protected me and cured me of all my ailments. The Lord has taken me under His wings and has become my protector.

द्वय सुभता हाथ सोही सुभता हाथ सोही नमो लोहे की चोट का झलहे लहंगी नमो दीप ज्वाला मुखी ज्यो बलंती नमो दीप ज्वाला मुखी ज्यो बलंती नमो पान की बान गंगा तरंगी नमो पान की बान गंगा तरंगी तेरे शाम है मोक्ष दाती अपंगी फिरे शाम है मोख दा

0: भाई नंदलाल जी,
1: ताल बे मौला
0: हमेशा जिंदा अस्त,
1: हमेशा जिंदा अस्त, ताल बे मौला हमेशा जिंदा अस्त।

त्रास मिटे, नाम लिए जम त्रास मिटे, तल काल नसे हर सर धैये, लोक परलोक सभी सुधरे। सेवा करन दा फल, सेवा दी महत्ता साहिब गुरु गोबिंद सिंह फरमा रहे, लोक परलोक सभी सुधरे, लोक परलोक सभी सुधरे, हर भगत परापत हो।

चार ताल दे अंदर यह रीतबद्ध है। इस नूं ध्रुपद ताल भी कहिंदे ने, चार ताल भी कहिंदे, ध्रुपद ताल भी कहिंदे। श्रवण करना

0: चार ताल के अंदर ए जोड़ी का खास संबंध है। जिस तरह इधरों आवाज और तान लगाने पेंदे ने जोड़ी विच इस दे नाल तोड़े और तिहाइयां बजाउणियां पेंदियां ने और खास तौर पर जोड़ी के बोल का और झोपट का संबंध है। तुसी सरवण कीता हुण गुरु गोबिंद सिंह कहिंदे सेव करो करना निज की, तो साहब कहिंदे सेव करी इन्हीं की भावत, शस्त्र की सेवा और शस्त्र की पूजा। गुरु गोबिंद सिंह जी फरमा रहे
1: सेव करो करना निज की जैसे विचार नाम लिए जम त्रास मिटे कल काल नसे हर शरण सिधरिए, लोक परलोक सभी सुधरे हर भगत प्राप्त होए तिहाइए। दास गोबिंद सिंह फतेह सतगुरु की, दास गोबिंद सिंह फतेह सतगुरु की, अस प्रभ छोड़ अवर
0: फतेह सतगुरु की। ये जो जंग विच फतेह हुई है ये किसी आदमी की नहीं, ये वाहिगुरु की फतेह है। गुरु गोबिंद सिंह साहब कहिंदे कि खालसे की फतेह चार कूंट विच होएगी, चढ़दे तो लहिंदे तक खालसे की फतेह होएगी और खालसे के झंडे झूलणगे। उन्हां दे अपने शब्द श्रवण करने गुरु गोबिंद सिंह फरमा रहे
1: लंक लूट लिया लंक

0: देखो खालसे की फतेह चार कुंड के अंदर
1: रूम नाप तू बजाओ शाम मोहरा चला सुनो नंदलाल एहसान प्रगट करूं मैं अपना राज
0: नंदलाल दे नाल गुरु साहब के वचन हो रहे भाई नंदलाल साहब
1: सुनो नंदलाल एहसान प्रगट करूं मैं अपना राज
2: एक वर्ण कराऊं
1: वाहेगुरु सिंह को नाम जपाऊं
0: चार वर्ण एक वर्ण करा वाहेगुरु सिंह को नाम जपाऊं
2: चढ़े तुरंग उड़ावे बाज
0: चढ़े तुरंग उड़ावे बाज
1: देश खालसे को तुर्क जा

0: देख खालसे को तुर्क जाएंगे बाहर, देख खालसे को तुर्क जाएंगे बाहर।
1: लाखों एक लड़ाऊं चले सिंह
0: देख मुकरा झूलन नेगे हस्ती साजे, झूलन नेगे हस्ती साजे, द्वार द्वार पर नौब झुकाए। सवा लाख जब झुके पलीता, सवा लाख जब झुके पलीता, तबे खालसा उदे

पर तेरा अग्गा नहीं सवरेगा, गुरु नानक दे दर दी सेवा करेगा ता तेरा ए लोक भी सुखी होवेगा ते फिर परलोक भी तेरा सुधर जावे। जिसने भी गुरु नानक दे दर ते आके निष्कामता दे नाल सेवा की, गुरु नानक दे दरों उस दियां चोलियां भरिया गई। भाई आदम जिसने अपने जीवन विच बड़े पीर फकीर औलिया देवतियां की पूजा, कोई भी ऐसा दर नहीं छड़िया जिथे ना गया होवे। किस कामना करके? मन विच कामना है भाई घर विच कोई बूटा लग जावे, औलाद हो जावे। जो भी किसे पीर फकीर ने हुक्म कीता ओ कुछ कीता, पर कितों भी मुराद पूरी नहीं हुई। निराश होके आंसू बहांदा आ रहा है ते गुरु का सिख अगों मिल गया। आख्या भले पुरुष तू बड़ा गमगीन नजर आउंदा है ते तेरे प्यार आंसू अखां दे विच आंसू ई। आख्या सारी उम्र काल ना कीती, जो भी कोई पीर फकीर ने जो कुछ भी किया मैं कीता है, पर मेरे घर कोई बूटा नहीं लग्या। मेरी इच्छा सी के मेरे घर कोई बच्चा हो पैंदा, क्योंकि शास्त्रकार भी कहंदे हन कि जिस दे घर औलाद ना होवे उदा संसार नालों रिश्ता टूट जांदा है। उच्चारण करो श्री भाई गुरु, ये बड़ी मिठी मुराद है। गुरु के सिख ने जदों ये सुनिया ते आख्या फिर गुरु नानक दे दर ते जेड़ा भी गया है वो खाली नहीं आया। ते गुरु नानक दी चौथी जोत हुण गुरु रामदास पातशाह श्री अमृतसर साहिब विखे सेवा करा रहे हन। तू उथे जा, तेरी चोली जरूर खैरायत पवेगी, जरूर बख्शिश होएगी तेरे ते। उच्चारण करो श्री वाहिगुरु। भाई आदम और उसकी घरवाली गुरु नानक दे दर ते सिद्धक और पामना दे नाल आके सेवा विच जुट गए। इना दी सेवा की है? बाहर जांदे हन लकड़ा चुग के ले आंदे हन, अद्धियां लकड़ा गुरु के लंगर विच दे देंदे हन ते अद्धियां अपने पास जमा रख लैंदे हन ते बाकी का जो समा है ओ गुरु के लंगर विच गुरु की संगतां दे जूठे बर्तन मांज के सेवा करके अपना जीवन सुफला रहे हैं। नेत दे नाल पिशावर तो संगत आई।

सहज तब खेले। गुरु अर्जुन देव पाछा शब्द विच अपने गुरु पिता दा शुकराना करदे होए, हे वाहिगुरु, हे अकाल पुरख, असी बालक हां, तू साडा परम पिता है। बालक हमेशा ही भुला करदे हां, भूले बालक अनेक लख वरिया। कितनिया तू भुला करदा है बालक, उसकी गिनती नहीं। पर तेरी रहमत नजर, तेरी बख्शिश सदा ही रहती है। जदों भी बालक कोई गलती करने लगता है, क्योंकि बालक अनजान है, बच्चा अग नू हाथ पा लेगा है, उसनू पता नहीं कि मैनू ये जला देवेगी। पर हे वाहिगुरु, जिस तरह माता पिता उस अग्नि तो बच्चे नू बचा लेंदे हन, चुक के अपने गल नाल ला लेंदे हन, तू ही इसे तरह सानू अपने गल नाल लाउंदा है। चंचल मत बारक बपड़े की सरप अगन कर मेरे। बच्चे नू कोई पता नहीं भाई ये वस्तुआं मेरे लिए नुकसान दे हन। बच्चा अग नू भी अनजाने हाथ पा लेंदा है, सप नू भी हाथ पा लेंदा है, पर मां सदा ही उसनू चुक के अपनी गल नाल लाउंदी है, उना खतरियां तो उसनू बचा लेंदी है। हे वाहिगुरु, तू ही इसे तरह मेरी रक्षा करदा है। जिसका पिता तू है मेरे स्वामी, तिस बालक भूख कैसी। गुरु अर्जन देव पातशाह अकाल पुरख का शुकराना कर रहे हैं।

गुरु प्यारियो, आप जी ने हुने हुने ही गुरबाणी दा आनंद माणिया है। असी आप जी दा ध्यान एक जरूरी गल वाल दिवाना चाहते हुए बेनती करदे हां कि जे आप जी घर विच परिवार विच ते बच्चियां नाल गल बात पंजाबी विच करदे हो तां आप धन्नता जो हो, जे कुछ कसर है तां अज तो इस पासे खास ध्यान दियो। बच्चियां पास पंजाबी विच गल बात करन दा समां केवल घर विच ही है, स्कूल विच, दोस्तां विच, घर दे नौकरां चाकरां नाल तां समां उन्हां नूं मिल ही नहीं सकदा। जरा सोचो, जे बच्चे पंजाबी बोल ते समझ नहीं सकनगे तां गुरु ग्रंथ साहिब जी दा पाठ करना ते समझना तां इक पासे रिहा, ओह गुरुद्वारे जाके की लाभ प्राप्त कर सकनगे? गुरु नानक गुरु गोबिंद सिंह जी नाल संबंध किवें जोड़नगे? अपना जन्म किवें सफल कर सकनगे? हो सकदा है आप जी ने इस पासे कदी ध्यान ना दिता होवे। असीं तां उस दाते दा सुनेहा आप पास पहुंचा रहे हां। जे कुछ उन्ताई है तां ध्यान दियो ते ओ पूरी करो। आप जितनिया वध तो वध जवाना बच्चियां नूं पढ़ाओ अच्छा है, पर पंजाबी तां सिखी दा मुढ अथवा फर्स्ट स्टेप है, सिखी दा तुरा है। एक अंग्रेज मुदब्बर ने ठीक ही तां कहा सी कि जिस कौम नूं कमजोर करना होवे उसकी बोली खो लवो, पर असीं तां अपने पैरां ते आप ही कुहाड़ा मार रहे हां। जदों गुरु नानक देव जी दा प्रकाश होया तां मुगल राज दा समां सी, हिंदी जनता कमजोर ते निटाल हो चुकी सी। महाराज जी ने इस कौम घातक वातावरण नूं पाब कीता ते बाणी विच फरमाया, घर घर मियां सबना जिया बोली अवर तुम्हारी। ए हिंदी जनता नूं हलूणा सी कि तुसी अपना धर्म ईमान छड के मलेच्छां दियां मर्यादा अपना के घर घर मियां बने हुए हो ते अपनी बोली भी त्याग दिती है। सो गुरु प्यारियो, अपना फर्ज पछाणो, केवल अपना घर ही नहीं बल्कि अपने होर सज्जना मित्रां नूं भी इह सुनेहा दे के गुरु दियां खुशियां

जैसे एक जननी कै होत हैं अनेक सुत, सभी में अधिक प्यारो सुत गोद को स्याने सुत बनज व्यवहार के विचार बिखे, गोद में अचेत एक संपैना सुहेद को स्याने सुत बनज व्यवहार के विचार बिखे, गोद में अचेत हेत संपैना सुहेद को।

ज्ञान मती घट चानना परम अज्ञान अंधेर मिटावे होए निमाणा टह पवे दर गए मान निमाणा पावे खसम।

ये बेनती कौन कर रहा है, ये अरदास कौन कर रहा है। गुरु नानक नू जिस किसे ने भी जिथे किथे पुकारिया, गुरु नानक उस दे दुख कटन वास्ते पहुंच गया। अज संसार नू तारदे होए धन गुरु नानक सच्चे पातशाह दिपालपुर दी धरती ते जा पहुंचे। शामा दा समा है, ते साहब जी ने मर्दाने नू आख्या वही जा मर्दानिया, ओ दुकानदार कोल पूछ वही कि असी मुसाफिर हां, प्रौणी हां, संसार ते आए और इथे मुसाफिर बन के दीपालपुर आए हैं, भाई एक रात बितानी है। जे रात तू दुकान बंद करके घर जावे ता असी तेरी दुकान दे बाहर आराम कर लवांगे। दीन दुनिया दा मालक सर्वशक्तिमान आप नारायण कलातार धन गुरु नानक सच्चा पातशाह रात ठहरन वास्ते थां मंग रहे। सात सगत बोलो श्री ते जदों मर्दाना दुकानदार को लगिया भाई आ तू हट्टी बंद कर लो मैं तां सी रात इत्थे ठहर जाई। वो कहिंदा भाई मैं आप नू जानदा कोई नहीं, मेरी तुहाडे नाल कोई जान पहचान नहीं, ते तुसी इत्थे ना ठहरो, किथे होर चले जाओ। संसार ते ऐसे भी सन जिन्हां ने गुरु नानक दा दर्शन पा के भी ओदे चरणां दी शो ना लै सके। भाग होवन तां चरणा दी शो प्राप्त होवे। कह दिता महाराज असी तुहानू नहीं जानदे, कृपा करो अगे चले जाओ, रात ठहरन वास्ते किथे होर थां ढूंढ लो। दीन दुनिया दा मालक जगत गुरु धन गुरु नानक सच्चा पातशाह कहन लगा चल मर्दानिया भाई जे इथे नहीं ठहरन की थां तां किते होर चलिए, चल इस पिंड विचों बाहर चलिए, शामा दा समा है। मर्दाने ने अखां उते हथ रख के वेख्या, आख्या बाबा ओ दूर एक चुगी जिदे विच रोशनी है, लेकिन है इथों दूर पिंड तो बाहर दिखदी है। हजूर कहन लगे चल मर्दानिया फिर अज रात उथे ही बिताइए, चल के रात उथे ही कीर्तन करिए, उथे ही परमेश्वर दे गुण गाइए, अज रात सफली करिए। साहब जी धन गुरु नानक सच्चे पातशाह बाले मर्दाने नू नाल लीता और जदों उस चुगी दे बाहर आके खड़ोते, साहब जी ने आख्या मर्दानिया जा भाई अंदर वेख इस चुगी दा मालक कौन है, ते उदे कोलों पुछ भाई आज रात असी इत्थे बिता लईए, सवेरे चले जावांगे। ते जदों मर्दाना चुगी दे अंदर गया ते चट बाहर आया मुंह ते पल्ला मर्दाने दे, गरीब निवाज अंदर ता बड़ी बदबू है, क्यों मर्दानिया? पातशाह अंदर एक कोड़ी पिया हुआ है जिसे हाथ पैर कोड़ दे नाल गल चुके हैं, सारी थां अंदर बदबू हुई पई है। गरीब निवाज अंदर इत्थे रात नहीं ठहरन दी कोई थां। हजूर कहन लगे मर्दानिया जा उस कोड़ी नू बार सद के लिया,
गरीब निवाज ओ तां तुर भी नहीं सकदा, उहदे तां पैर ही गल चुके हन घोड दे नाल। अच्छा मर्दानिया, जे ओ आप नहीं आ सकदा तां तू उस नूं खिच के बाहर ले आ। मर्दाना, उस कोड़ी नूं ध्रू के खिच के बाहर लियाया ते लिया के गुरु नानक सच्चे पातशाह दे सन्मुख कीता। लोग गरीब निवाज साहब जी ने तकिया, कौड़ी वाल मेर दी नजर कीती। कौड़ी ने जदों गुरु नानक सच्चे पातशाह दे दर्शन कीते, ऐसे रूहानियत दे दर्शन कीते, अकाल पुरख वाहेगुरु दे रूप दे जदों दर्शन कीते, तां कौड़ी दा तन मन ठर गया। आ जिस कोड़ दे विच हाय हाय बिलख रहा सी, कुरला रहा सी, ओ दुख भुल के गुरु नानक वाले अखां ला के तक रहा है। आख्या, महापुरखो, हे रब दे प्यारे हो, रब दे रूप कितों आए हो, ते मेरे जैसे कोड़ी दे कोल रात ठहरन वास्ते जिसनू घर वालियां ने भी कढ छड्या, दुरकार के कढ छड्या, क्योंकि किस वेले मैं भी बहुत धनी सां, मेरे पास बहुत पैसा सी, मां प्यां दा साया सिर तो उठ गया, ते जितने मित्र दोस्त सन सारे धन नू ही चाहण वाले सन। ऐसी कुसंगत मिल गई मित्रां दी दोस्तां दी कि मैं गलत रस्ते तुर पिया, ते ओ जेड़ा तन सी उदे नाल मैं पाप कीते, ते जदों तन खत्म हो गया ते मित्र दोस्त भी साथ छोड़ के चले गए, ते उस तन दे नाल जदों मैं पाप कीते सन, ओ पाप हुण मेरे तन ते कोड़ बन के फुट पए हन। सात सगत बोलो श्री। हुण जदों मैं कोड़ी हो गया तां मेरे घर वालियां ने भी आख्या, हुण तू घर दे विच रहण दे लायक नहीं, क्योंकि तू छूत दी बीमारी है, जे तेरे नाल कोई होर लगेगा ओ भी कोड़ी हो जाएगा। इस वास्ते मैनू आ घरों पिंड विचों कढ के इत्थे चुगी पा के बिठा गए। कितने कितने दिन बीत जांदे हन, मैनू मनुख दी शकल नहीं दिसदी। कोई तरस करके रोटी रख जावे तां मैं खा लैंदा, नहीं तां भुखे ही समा बीत जांदा है। लेकिन हे रब दे प्यारियो, तुसी आज इस स्थान ते जिसनू संसार विच सारिया ने दुरकार दिता, सारिया ने निकाल दिता, तुसी मेरे कोल रात ठहरन वास्ते आए हो, मैं आप दी किवें सेवा करा, मेरे हाथ नहीं, मेरे पैर कोई नहीं, आ वेखो कोड़ लग्या होया हथां पैरां नूं। जे इना हथां दे नाल मैं साध संगत दी सेवा कर लेंदा तां खबरे आ दुख मैनू ना लगदा, जे इना पैरां दे नाल मैं माड़े पासे तुर के ना जांदा, सत्संग वल जांदा, तां अज मैं कोड़ी ना होंदा। लेकिन आए हो तां हुण मेरे ते कृपा करो। गुरु नानक सच्चे पातशाह ने जदों उस दा कोड़ी दा आ विरलाप सुनिया, दुख सुनिया, कोड़ दे विचकार बिलख रहा है, तां धन गुरु नानक सच्चे पातशाह ने उत्थे तनाश्री राग दे विच शब्द उचारिया, साहब जी ने की आख्या,

0: सुखदाय हर को नाम सदा सुखदाय
1: हर को नाम सदा सुखदाय
0: जा को सिमर अजामल।

सूरज चढ़े हजार इत्ते चानन हुंदिया गुर बिन कोर अंदा गुर घर फिरोजद मिजारा।